नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः।

नमः। ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हरा

ओम श्री साई राम ऑफरिंग माय मोस्ट हम्बल प्रणाम्स एट द डिवाइन लोटस फीट ऑफ आवर बिलवेड भगवान श्री सत्य साई बाबा डियर स्वामी ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ आषाढ़ी एकादशी द बाल विकास स्टूडेंट्स फ्रॉम गोवा प्रेजेंट अ डिवोशनल ड्रामा एंटाइटल्ड तू सर्वाहुनी गोड रे गॉड इज स्वीटर देन एवरीथिंग भगवान यू हैव ऑलवेज रिमाइंडेड अस दैट विदाउट गॉड देर कैन बी नो डिवोटी एंड विदाउट अ डिवोटी देर इज नो गॉड ओ साई विठला विथ आवर हार्ट्स फिल्ड विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड We now offer at your divine lotus feet this musical drama of a love story between you and the devotees of Goa and how you go to any length for your beloved children. Jai Sai Ram.

संत गाड़गी बाबा महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक। उन्होंने समाज से जाति भेद, बुरी आदतें, नशाखोरी और अस्वच्छता के प्रति जीवन भर जन जागृति की। वे गांव गांव घूमते और प्रबोधन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और नैतिकता का पाठ पढ़ाते। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं गांव की सफाई करने की परंपरा शुरू की। बाप हो ईश्वर सगळ्यांमध्ये आहे। प्रत्येकाची मदत करा, सेवा करा, प्रत्येकावर प्रेम करा, यही संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। वैसे ही राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। भजन और समाज प्रबोधन के माध्यम से उन्होंने ग्राम विकास, एकता, स्वच्छता और नैतिक मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज का प्रसिद्ध ग्रंथ ग्राम गीता आत्मनिर्भरता और आदर्श गांव का जीवन सिखाता है। उनका संत साहित्य में अमूल्य योगदान है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से भजन लिखे और गाए। भजन में भाव सरोपरि है, ईश्वर भाव प्रिया है, यद भावम तद भवति। और इसी प्रेम भाव के संदर्भ में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, मनी नाई भाव मणि देवा मना पाव। आओ उनके ही श्रीमुख से सुनते हैं।

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जपिए।

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य

नास्ति क्रोधम समोरिपुहि नास्ति दारिद्र्यमत दुःखम नास्ति प्राप्ति

पुटपर्ति पुरंदर नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा सत्य